मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया, मैं गोबिंद सिंह हां। बैरागी ने फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं तकदिया प्यास नहीं सी लेंदी। उसका शरीर कंब रहा सी, बुल कंब रहे सन, आवाज कंब रही सी आवाज। होली जी कहन लगा, तुसी गुरु गोबिंद सिंह? गुरु जी हस पे अते उसके तप द्वारा कठोर बने हुए शरीर नूं इउं तकिया जिवें उन्हां दियां अखां दो हाथ होण, अते उसनूं घुट के अपने सीने नाल ला लैण लई उतावले हो। अते तीर जे बोले उस माधोदास बैरागी नूं, तू कौन है? ता माधोदास बैरागी चरणा नूं चुमदा होया कहन लगा, मैं तुहाडा बंदा गुरु जी, मैं तुहाडा बंदा। मैं तुहाडी बड़ी उड़ीक कीती, बड़ा ढूंढिया, बड़ा लभिया, अज तुसी मिले, मैनू शांति नसीब हुई, मेरी मंजिल मैनू मिल गई। गुरु जी ने माधोदास नूं उठा के अपने कोल बिठाया, प्यार नाल कहा, जानदे हुए भी पुछदे ने, तू बैरागी क्यों बनिया? तां माधोदास ने अपनी कहानी सुनाई। एक हिरनी दा मैं शिकार कीता, ओ मरी, ओदे बच्चे भी तड़प तड़प

जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि, जिसनु जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ दे पे ने, जुल्म पे कर दे ने माधोदास बैरागी ने। ए सुनिया होया सी और सुनिया भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां सारिया ने

महाराज ने माधोदास बैरागी नूं अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नूं गुरबख्श सिंह भी कहा जांदा। गुरु साहब ने अपने पांच तीर दिते जिन्हां दे नाल सुनने लगे हुए सन। पांच सिंह अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमा दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंडे तों पंजाब वल तोर

पंजाब वाल तोरिया जेड़ा कियामत जगाउंदा पचाल लियाउंदा खून दियां नदियां वगांदा होया पंजाब वाल वध तुरिया। किसी ने पूछया बंदा सिंह तुसी ये की कर रहे हो ता बंदा सिंह बहादुर ने कहा मैं अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा मैं जालमा का नाश कर रहा उन्हां किलियां नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुलम हुंदे ने वो शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे ने। ये कहिंदा होया बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं तुरिया जा रहा है।

बंदा सिंह बहादुर जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है तां सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले, उन्हां जिउंदियां नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वो नजारा अखां सामने आया, अखां गुस्से नाल लाल हो गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियां नूं वंगारदिया होया आखिया, एहो ही वो सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु दे नन्ने नन्ने मासूम बच्चियां नूं द्वार विच चुनिया गया। मैं चाहना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दियो, नीहां विच साहबजादे चिणे गए। देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे, हल चला दियो, इस शहर नूं मिट्टी च मिला दियो। देखदिया देखदिया बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरां नाल अहलकारां नाल जरनैलां दे नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकिया। देखदिया देखदिया शहर साड़ के सुआह कर दिता, किले ढा दिते, मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान वो भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती। जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया, हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहबजादियां दी शहीदी दा अज मैं बदला ले ले। और 7 साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ये तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दुआलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़ी।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नू हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई, मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हों तै पै मांगू, देवो अपना नाम, मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया है, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा एक

खट खट रव रहा बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी ज़ियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उथे मिल जावे। कबीर हज काबे हों जाए था, कहंदे ने अगे मैनू खुदा मिल पिया ते खुदा ने मेरे नाल झगड़ा कीता। कहन लगे कबीर किथे चले हैं? मैं क्या मालिक मैं तां तैनू मिलन चलिया। तां कहंदे ने नाराज हो गए मेरे नाल झगड़ा कीता भई लोगां दी तां मत मारी गई है तेरी भी मारी गई।

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाऊ लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक प्रेस मिलिया।

हर हर चंद्र देव धारे, हर हर चंद्र देव धारे, शिव स्वामी सदगुरु अपना काज सब हमारे, बुंदार पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे, पुनदान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगमी अपारे, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिलका पार कछ न विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवन।

कोई गावे, कोई सुने, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है या सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनता है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृतमयी बाणी, जिस बाणी प्रथाएं गुरु पातशाह कहते हैं।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा एक थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिसते विच के बाणी असा कलयुगी जीवां दा उधार करन ही गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नू दित्ती है मेर कीती है पातशाह ने।

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना

बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता, बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे, बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच का

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहेगुरु शब्द का उचारण करदा है उसनू एडा वड्डा फल प्राप्त है कि जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ आठ तीर्थां दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इस दा महात्म एथे ही बस नहीं अगलिया

कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, उन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इदा वड़ा महात्म क्यों है? ता भाई साहब अगली पौड़ी

0: पूर पूर देख दे,
1: पाट गए ने कागज तुसा दे लेख दे, हार गए तुसानू समझौ दे कल दे, देखांगे तसीरे तुसी किवे नहीं चल दे, पाप दिया पंडा ने जलाद बन दे, साहेबजादे इन

पर नाल शर्त यह है जिवें हीरे का पारखू होना बहुत जरूरी है, जिवें हुंडी का मुल पाउण वाला सामने बैठा होना जरूरी, नहीं तो वाकई कागज का कोई मुल नहीं पाया। जिवें बोड़ के बीज का ठीक स्थान से ठीक हालात च पहुंचना जरूरी है ताकि वह उग सके। बोड़ा के जो सारे बीज अज तक रुख बनन लगे होंगे, सारी धरती से बोड़ा ने सारा स्थान मल लिया होंगे, पर नहीं ऐसा नहीं होया। एक एक दा एक गोल के दाने अंदर हजारा बीज मौजूद ने और एक एक रुख से हर वरे लखा गोलां लग जांदियां ने ते सारे तो रुख नहीं बन जाते। जिस बीज नूं हालात मिलते ने वातावरण बनता है वही रुख बनता है। इस तरह गुरबाणी के संबंध भी समझ लेना, हालात बनाने पैंदे ने। इहदी रुत है अमृत वेला, ध्यान देना, इहदियां जड़ां हिरदे विच, इहदा पसार सुरती विच, इहदा फल दरगाह विच। पर गल इह है इनिया प्रगटा वाला गुरु का शब्द भागा वाले किसी विरलिया नूं समझ आए। बहुते लोगों ने गुरु शब्द के महत्व नाम समझदिया हो ना इसकी महत्ता समझदिया हो सिर मार छड़िया होगा।

क्या है, या कई ने पढ़िया होगा तो उपरा उपरा मर्यादा रस्मन पढ़िया होगा, पर भाई साहब कहते ने यह खोजन वाले की गल, जे कोई खोजेगा तो पा लेगा।

भाई साहब तो कहते ने यह तो विलोवन की गल है, खोजन की गल है, समझण की गल है। वैसे साडा मार्ग गुरसिख का मार्ग भी ऐसा है। भाई साहब भाई गुरदास जी एक स्थान से बड़ा प्यारा कहने कहने सानू अपने मार्ग का पता तो होना चाहिए। गुरमुख सच्चा पंथ है, सिख सहज कर जाए खलोवे, सहज साडी मंजिल है, गुरसिखी साडा मार्ग है, गुरमत साडा मार्ग है। गुरमुख सच रह रास है, पैरी पै पा खाक जे होवे, गुरसिखी दा नावना गुरमत लै गुरमत मल धोवे। फिर गुरसिखी दा पूजना गुरसिख पूज बिरम रस भोवे। गुरसिखी दा मनना गुर बचनी गल हार पर सिख नू पता होवे मैं नाना कैसा है, गुरबाणी विच पवित्र होना, मैं पूजना किसनू है, गुरबाणी पढ़ने वालियां नू पूजना है, आपे गुरबाणी पूजी जाएगी। मैं मनना किसनू है, गुरु के बचना। ते होर बड़ी प्यारी गल कहने गुरसिखी दा जीवना जीवदिया मर हो मैं खोवे। गुरु के बचना नू हिरदे च धारण करन दा एक तरीका यह बहुत जरूरी है कि मनुख अपनी मन मत छड़ देवे, हंकार छड़ देवे, निर्माण होके गुरु की बाणी नू समझन दा जतन करे, गुरु के बचना नू हुक्म जान के मन। गुरसिखी दा जीवना जीवदिया मर हो मैं खोवे। ते पौड़ी दी अंतली सार तुक च भाई साहब कहिंदे ने साध संगत गुर शब्द मिलोवे। सत संगत विच मिल के गुरु के शब्द नू रिड़कना करे, गुरु के शब्द नू मथे। जिन्हां ने आनंद लेना है ना, जिन्हां ने रस लेना है, स्वाद लेना है, स्वादी शाय मूह विच आ जावे ते बंदा अंदर लंघाउंदा नहीं, वध तो वध समा मूह च रखण दा जतन करदा है। ते महाराज ने पावन बाणी जी बचन कीता है, सार चब चब हर रस पीजे। गुरबाणी दा गुर शब्द दा जिन्हां ने आनंद लेना है वह गुरबाणी नू रस लै लै के पढ़दे, स्वाद लै लै के दुरा दुरा के झूम झूम के गा गा के विचार विचार के एक एक अखर एक एक शब्द नू समझ समझ के लगा मात्रा तक दा ध्यान रख के ठीक उचारण करदे आ, विचार दे नाल पढ़दे ने, ओ स्वाद लैंदे ने, ओ रस लैंदे ने। ते भाई साहब कहंदे ने

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते

गुरु पातशाह इतो हुण पिट हो रही है, माफी दे दे। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी परी सिर ते चुकिया। अज एडा मी पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

अभय पद राज अभिखन अधिक करियो ए शब्द भगत नामदेव जी दा उचारे होया। इस शब्द दे विच परमेश्वर दे नाम दी वड़ियाई अते भगतां दे नाल उस परमेश्वर दा प्यार इस शब्द तों भगत नामदेव जी सानू ए उपदेश देंदे ने, ऐ इंसान अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेंगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेंगा इन्हां भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हुए ने। राजे भी सन पर राज कमान दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नूं अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण के चक्कर तों ओरहत हो गए। राज पवीखन अधिक करियो, जिस तरह पवीखन नूं श्री रामचंद्र ने रावण नूं मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत होंदा है उन्हूं सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इन्हूं भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया, भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार होके

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ अस उपारना, ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना वर्त तोड़ी। अमरीकन लगा सतबच ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता। पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा रिखी, चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदा हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अम्बरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहे, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिया, तो वह श्राप देन वास्ते तैयार हो गया, अखा गुस्से ना लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होण कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नूं, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नूं कहा ए जड़ा राजा अम्बरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म कर।

ओ परमेश्वर, जिस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी, नाउ निधि ठाकर दई सुदामे त्रू अटल अज हूना टरियो। अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी, त्रू भगत ते कृपा की थी, भगत हेत मारियो हरनाकश, भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाकश का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते नहीं केसव परमेश्वर नू के सोने केसा वाला परमेश्वर, ये ओ जिहड़ा परमेश्वर है वो भगतां दे वास है। इस वास्ते ता अज तक वो बल राज दे द्वारे ते खलोता होया है। तो गुरु साहिब जी भी बाणी विच कहंदे ने, भाई अमरीक ने सिमरन कीता, राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी, ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुसी भी सिमरन करो, दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा

उन्हना मूर्खा ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी हुईयां, हर लड़ाई विच

के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो किधरे होर चले जाओ। मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी के तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा। पहाड़ी राजियां ने आटे दी गऊ बना के कसम खाधी। सिखा ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह नू महाराज आप किला खाली कर दियो। कई महीने हो गए ने किले विच असी बैठे हां, खादा भी कुछ नहीं, खान नू रिहा भी कुछ नहीं। औरंगजेब मुसलमान है, उसने कुरान शरीफ दी कसम खाधी। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खाधी है ये साडे ते हमला नहीं करनगे। पर गुरु साहब ने कहा इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने साडे ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हां कुछ दिन बीते। भाई मान सिंह इसने बेनती की थी, महाराज पता नहीं किन्ने दिन होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा, कृपा करो अगर आपने किला खाली नहीं करना तो सानू आग्या दियो, असी अपने घरां नू जाइए। गुरु साहबां ने कहा मैं ते पहला कहा सी कि जिन्हें मेरे को आना है, जिन्हें मेरी गली विच पैर पाना है, वो अपना सिर अपनी तली ते रख के आ।

एक कागज लो, उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख ने, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नू प्यारी समझिया, कागज लिया उत्ते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियों समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

जिथे वड़े साहबजादे शहीद हुए उथों तुरे माछीवाड़े आए माछीवाड़े तो चले कई जगह होंदे साहब जी जगह जगह ठहर दे लखी जंगल पहुंचे संगता गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईया ओही रौनका फिर लग गईया पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं जदों गुरु साहिबां दे धर्म सुपत्नी माता सुंदरी जी ने पुछिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं महाराज मेरे चारों साहिबजादे कित्थे ने ता गुरु साहिबां ने कहा सी

जिन्ना हाली जूना है तुहाडे साहबजादियां ने सिखी दा महल होर पक्का कर दिता है अपना खून दे के। समा बीतिया गुरु साहब जी हुण कोट कपूरे पहुंचे, साहबां नूं पता लगा सरहंद दा नवाब वजीर खान 5000 फौज लै के पिछा करदा आ रहा है। तां गुरु साहबां ने कपूरे नूं कहा, कपूरे आ साढ़े पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लैके आ रहा है, तू अपना किला दे तां कि इत्थे असी उहदे नाल दो हथ कर लईए। कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है, पर औखा समा देखिया तां इह वी मूंह फेर गया। कहन लगा, महाराज मुगलां दा राज है, मैनू मुगलां कोलों डर लगदा है, जे तुहानू किला दिता ते मुगल मैनू खत्म कर देणगे, वजीर मैनू खत्म कर देवेगा, बादशाह मैनू सजा देवेगा। तां गुरु साहिबां ने कहा, जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानू लोड़ नहीं। अज भी इहो जिहे लोक आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने, सिखी छड्डदे ने, अमृत तों दूर ने, पर जिहड़े इंसान अपने धर्म च पक्के नहीं, अपने गुरु दे उपदेश

मान सिंह म्यान विचु कृपान खिची जकारा छड़िया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार केकेया पाई मैनू आज

करेंगे कहां जो प्रभ काज ना अहे इह। इस जीवन नु की करना है जे गुरु दी खुशी ना मिली। सिखी गुआ के जीवे ता क्या जीवे। सेवा करदे हां सिखी निभांदे हां मौत होवे ता जीवन सफल हो। ए गल भाई मान सिंह ने कही ता माई भागो हाथ विच सांग फड़ी इस वी लकीर टपी ते ए गल कही भरावो भैन।

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणंग शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नू भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणन छत्र गाहे रणन कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नू अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोऊ बड़े उत्साह परे शस्त्र मारे महा जंग माही कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सोछाले उछाले म्यान विच तेग कटी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखे उसने कि ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह का डंका बजाया वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है सेंट दा पे है सह टुटदे ने। हुण भाई मान सिंह अरदास

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं, हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं।

करके दिखाया कि असां तां गुरु वास्ते प्राण देने नी और प्राण दिते भी। आओ भाई अरदास करिए सच्चे पिता एहो जिहा जज्बा एहो जिहा उत्साह सानू भी दे तां कि तेरे राह ते चलदे होए सच ते चलदे होए दुनिया दे भले वास्ते जीवीए जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला अमृत छकीए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते लड़िए अते अपना जीवन सफल करिए।

महायोधे सर्वांश दानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हें इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हें दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया, उन्हें अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे रहत बैत विच रवे गुरु दे उपदेश ते चले ते गुरु साहब जी कहंदे ने ओ फिर चूड़ा नहीं ओ खालसा है ते

जे तू मेरे हिरदे विच्चों विसरजन जाए, जदों तू मेरे हिरदे विच्चों विसरदा है उस वेले मेरी आत्मक मौत हो जाती। तू विसरे ता सब को लग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे हावी हो जाते हैं उदों जदों तेरी याद विसर जाती है मेरे हिरदे विच्चों। इस वास्ते मेरी अरदास है पातशाह तू मेरे चित विच्चों कदे ना विसर, हर वेले मेरे अंतस्करण विच वसदा रहे। सतनाम श्री वाहिगुरु। असां कलजुगी जीवां दे उद्धार हित अपने निज स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच गुरु अर्जन देव पातशाह अरदास।

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे। बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए, जिथे मोह बनिया हो प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धियां विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वाहगुरु नाल विछड़िया बंदा किन्ना दुखी, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी की लगती, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आप, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदियां सुनियां भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी दी भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी है। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहिंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, आ कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदो गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जाते। दुख बिन से पूर्ण पई खाल, कदों जदो गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, यह गल वखरी है। सत्संगत इस तो कुछ साहबा ने कहा है ना, गुर पूरे जब भय दयाल। ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी, सतगुरु सदा दयाल है भाई। गल इन्नी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणां ते मत्था टेकिया है कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पल्ले पैंदा, ते पावन बाणी च तोका हुंदी है।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

मैं क्या मांगू किच थिर न रहाई। तू दाता है, तेरे कोल सारिया दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है पई मैं मंगा की। हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान एक दखना हो तै पै मांगू। देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

दरबार विच बैठे। साई मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन दे पातशाह कहन लगे, साई मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है, तो चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले ते ए गल संगत नू पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी, गरीब नवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतर जामी गुरु अर्जन देव

रेत तपाओ, रेत तपाई पड़ पूंजे नूं सदिया, जो दाने पुंदा सी के तू अपने कड़छे पार पार के गर्म रेत लैके अर्जुन दे सिर विच पा। साथ संगत बोलो श्री तलों तत्ती तभी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं, ते साहब जी दे जदों भी बुल फुरकदे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साईं मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं, उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती की गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे साई मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, ता आवेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरी नाम से, अंदर परमेश्वर दा नाम वसया, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नू, आ शरीर नू क्या दुख देवेगा ए चंदू। साई मियां मीर जिसने हरबंदर साहब दी नी रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नींव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती कीती गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे शक्ति नहीं दिखांदे तां मैनूं हुक्म करो मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है जरना वड्डी गल है, शक्ति होंदिया होया जर लैना ए वड्डी गल है। ता उपर वेख गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या हजरत मियां मीर उपर तक जा उपर देखिया ता 33 करोड़ देवी देवता हाथ बन्ने खड़ोते हैं, गरीब निवाज सानू हुक्म करो, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह पाणी विच बैठे हैं ते की

कोई अवर ना सूझे हर नामो अंत छड़ाता, क्योंकि जीवन तो सुख देंदा ही देंदा है, जीवन तो बाद कौन बाह फड़ेगा, कौन छड़ावेगा सवाए प्रभु दे नाम दे। ते जे सतगुरु ने इस नाम दे लड़ लाया, हर नाम दिया गुर पर उपकारी, धन धन गुरु का पिता माता, वो आप दा धन, उहदे माता पिता भी धन। हुण सतगुर अपने को सदा नमस्कारी, मैं उस सतगुरु नूं सदा नमस्कार करा, जित मिले हर नाम मैं जाता, जिसने जाग अंदर कुदरत वरताई। आम तौर ते महापुरशां ने वडियाईयां प्राप्त करके बख्शां लैके अपनी पूजा करवाई, अपना सत्कार कराए, लेकिन धन गुरु नानक ने निरंकार नाल जोड़े है। आ जिहड़ी पौड़ी भाई साहब भाई गुरदास जी ने कही है, तरी निशानी कौंस दी, मक्के अंदर पूज कराई, मक्के अंदर गुरु नानक दी एक खड़ाम पई, हाजी जांदे ने हज करदे ने इस खड़ाम नूं ही मत्था टेकदे, लेकिन गुरु नानक ने नहीं कहा मेरी खड़ाम नूं मत्था टेकना। गुरु नानक तां मक्के अंदर भी ये कहंदे ने प्रभु दी पूजा करो, उन्हां तां प्रभु दी पूजा कराई। ये गल वखरी है कि प्रभु नाल जोड़न वाले दी खड़ाम दा भी सत्कार अज तक हुंदा चले आ रहा। जिथे जाए जगत विच एक मक्के दी गल की, बाबे बाज ना खाली जाई, संसार ते जिथे भी गुरु नानक दे चरण पए ने लोकां दे जीवन बदलदे चले गए। जिहड़ा जिहड़ा भी गुरु नानक दे सामने आया, उहदे जीवन च कितरे तब्दीली आउंदी चली गई, नाम दे सदका, गुरमत दे सदका। घर घर बाबा पूजी है, हिंदू मुसलमान गुआई, घर घर च गुरु नानक दी जय जयकार हो रही है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान चाहे कोई होर मत वाला।